0: तेरे
1: क्या फक करूं मैं ये तेरी मैं कोरे रोते कुत्ता
0: पारे आते ने
2: All the best throwbacks, 90s and more.
3: Aotearoa Tour.